0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: संजना, संजना।
1: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां,

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live fan. Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: करना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो

0: आज लेना एक वादा है
1: क्या?
0: आचा आचा शादी का इरादा है
1: क्या?
0: शादी का इरादा है
1: शादी
0: का इरादा है
1: शादी ना वो बना
0: मगर क्यों
1: शादी तो बर्बादी है
0: क्या कहती हो
1: जाती आजादी है
0: नहीं नहीं सुनो तो सुनो तो सुनो तो आप यहाँ आए इसलिए आपने बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए पहले जरा आप मुस्कुराइए पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार को निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

वेरी गुड।

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल कर रहा हूं मैं आपका हमराही समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। लेजेंड्स के सफर पर ले जाने आया हूं आपको, एक ऐसा सफर जहां आपको कुछ ऐसे अचीवर्स की कहानी में सुनाता हूं जो बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं, जो मोटिवेट करते हैं हमें। उनकी जिंदगी की कहानी कहने में भी सुकून है और सुनने में भी सुकून है। एक मुस्कुराहट के साथ हौसला परमानेंट एलिमेंट होता है इन कहानियों में। तो आज की कहानी एक कविता से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस शख्स की बात आपसे कहना चाहता हूं उनकी कहानी हम सब ने सुनी है, उनके नाम से हम सब वाकिफ हैं, मगर कहने को शब्द कम पड़ते हैं। मैं आपको उनका नाम बहुत जल्द बताऊंगा, पहले ये सुनिए। ट्यूनिशिया में कुआं है, कहते हैं उसका पानी धरती के अंदर ही अंदर उस पवित्र कुएं से जुड़ा है जो मक्का में है। मैंने तो ये भी सुना है कि धरती के अंदर ही अंदर हर कुएं का पानी हर कुएं से जुड़ा है। कुएं की कहानी इसलिए क्योंकि कुछ कहानियां कुएं से शुरू होती हैं। ये उन दिनों की बात है जब लोग कुओं से पानी भरा करते थे। कुछ लोगों को वहां से पानी भरने नहीं दिया करते थे, चीजों को छूने नहीं दिया करते थे, लोगों के छू जाने से भी बचा करते थे, जब लोग ह्यूमन होने के बजाय कास्ट हुआ करते थे। मैं उन्हीं दिनों की कहानी आपको सुनाने वाला हूं, क्योंकि उन्हीं लोगों में से जो कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी के शिकार थे कुछ निकले और इन सब माल प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक ऐसी इबारत लिख दी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाई और सोसाइटी की ये सब बुराइयां बन गईं अपराध। कोई भी अगर किसी आदमी के साथ ऐसा बिहेव करेगा तो उसे सजा मिलेगी। और उनका नाम था, जिसे हम बहुत मान से लेते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर अंबेडकर। तो क्या आप तैयार हैं उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को छूने के लिए मेरे साथ? क्या कहा? हाँ, तो बस फिर देर किस बात की, झटपट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और मैं बाबा साहब के किस्सों के साथ आपका इंतजार करूंगा रेडियो मसी 24/7 लाइव की इस महफिल में। नाम है जिसका लेजेंड्स।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस
4: का। अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है, टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
5: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं, सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
6: कबीर दास जी कहकर गए, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। यानी अगर तुम अपर कास्ट में पैदा हुए हो तो अलग तरीके से क्यों नहीं आए हो, उसी तरह से क्यों जन्मे हो जैसे हम सब जन्मे। एकदम सटीक बात है, एकदम सलीके से कही हुई बात। कबीरदास जी के इस दोहे के साथ लेजेंड्स अचीवर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं समर, मिलता हूं रेडियो 24/7 लाइव पर। आज भीमराव अम्बेडकर साहब की कहानी आप तक लेकर आया हूं। भीमराव अम्बेडकर भी एक छोटी कास्ट महार में पैदा हुए, लिहाजा उन्हें भी इस छुआछूत की बुराई का शिकार होना पड़ा। स्कूल में पढ़ने जरूर जाया करते थे, मगर प्यास लगने पर उन्हें कोई पानी नहीं पिलाता था, क्योंकि वो पानी के बर्तन को छू नहीं सकते थे, ऊपर से पानी पिलाया जाता था। ये काम ऊंची जाति के पियोन किया करते थे, और जिस दिन वो ना आए उस दिन भीमराव अम्बेडकर और उनके दलित साथी पूरा दिन प्यासे रह जाया करते थे। इसी प्यास ने उन्हें एक महान आदमी बना दिया, क्योंकि उन्होंने दूसरों के प्यासे कंठों की चिंता की अपनी प्यास के बजाय। समाज का जो रूप मैं आपको दिखा रहा हूं वो 1890s का दौर था। साल 1891 में 14 अप्रैल के दिन भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। ईस्ट इंडिया कंपनी के मऊ छावनी के मिलिट्री स्कूल में एक हेडमास्टर थे वो। मऊ छावनी मध्य प्रदेश में थी। रामजी का पद सूबेदार मेजर का हुआ करता था। माँ का नाम था भीमबाई, जिनके नाम पर भीमराव अंबेडकर का नाम रखा गया। भीमबाई के फादर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ही मुलाजिम थे। बेसिकली ये लोग महाराष्ट्र के रहने वाले थे, एक मराठी परिवार था, आज के महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अंबावाड़ी के रहने वाले थे। तो बहरहाल भीमबाई और रामजी के कुल 14 संतानें हुई, और इन सब में सबसे छोटे थे भीमराव। बीमारियां, महामारियां और जाने किन परिस्थितियों की वजह से 14 में से सिर्फ 5 बच्चे ही सरवाइव कर पाए। ये थे 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव, और 2 बेटियां मंजुला और तुलसा। भीमराव जी ने इस पूरे परिवार को एक अलग ही स्तर दिला दिया, न सिर्फ अपने समाज, अपने शहर, राज्य या देश में, बल्कि पूरे विश्व में। लेकिन क्योंकि इनके पिता भी पढ़े लिखे थे, कबीरपंथी थे, यानी कबीरदास जी को मानने वाले थे, उनकी फिलॉसफी के फॉलोअर थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, स्कूल भेजा। हालांकि स्कूल में कुल 5-6 बच्चे थे जो दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। उन सबको क्लास से अलग बैठाया जाता था, बैठने को अपने घर से टाट का टुकड़ा वो लोग लेकर जाया करते थे, कुछ छू नहीं सकते थे, मास्टर जी उनके पास नहीं आते थे, उनकी नोटबुक चेक नहीं करते थे, पानी भी पियोन ही पिलाया करता था, जो मैंने आपको बताया, अगर वो ना आए तो प्यासे रहना पड़ता था। एक दफा बड़े हो जाने पर बाबा साहेब ने अपने इस दुख को कुछ यूं लिखा, नो पियन नो वाटर। लेकिन इसे पढ़कर और आपको सुनाकर मेरी आंखों में पानी आ गया है। क्या दिन थे वो, किस परिस्थिति से गुजरे, चलिए यहाँ पर एक भीगा भागा सा ब्रेक ले लेते हैं, मैं मिलता हूँ आपको इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कहानी जारी रखूंगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, आप हैं समर के साथ लेजेंड सुनते हुए।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पे ले चलो।
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर, हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाज

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। इसके माने हैं एक ही परमात्मा से हम सब जन्मे हैं, बस सबकी देह अलग है। आत्मा सभी में एक है, फिर कैसी छुआछूत जब देह के अंदर सब कुछ एक जैसा ही है। एक बार फिर से कबीरदास जी के इस दोहे के साथ लौटा हूँ, जो जाने कब से यही बात कह रहे थे कि हम सब एक हैं, लेकिन हम इंसानों ने कभी से माना। यही बात भीमराव अंबेडकर साहब को समझ आ रही थी। पिता थे कबीरपंथी, हालांकि आगे चलकर पिताजी से उनके रिलीजियस डिफरेंसेस रहे, उन सब की भी बात करेंगे। फिलहाल हम नन्हे भीमराव अंबेडकर के जीवन पर हैं, जो सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये सब उसके बाद की बात है, जब उनके पिता का रिटायरमेंट हो गया। साल था 1894, तब वो महज 3 साल के थे। ये लोग शिफ्ट हो गए महाराष्ट्र के सतारा में। यहीं इनकी प्राइमरी एजुकेशन हुई, जहां उनको रेस डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। 5 बरस के थे तब मां का देहांत हो गया। एक दफा अपने एक भाषण में बाबा साहब अंबेडकर ने बात कही थी कि किसी ज्योतिषी ने उनके होने पर कह दिया था कि यह बच्चा अपनी मां के लिए ठीक नहीं है, और यही हो भी गया, उनकी मां गुजर गई। ऐसे में उनके भाई बहन भी उनसे बहुत चिढ़े और बहुत खफा रहते थे। इस सबके बीच इस बिन मां के बच्चे को बुआ ने पाला पोसा। तो इस तरह की कठिनाइयों ने भीमराव रामजी अंबेडकर के जीवन की शुरुआती लम्हों को बुरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन वो पढ़ते रहे। बाबा साहब खुद कहा करते थे कि वो कभी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, मगर उनमें पढ़ने की इच्छा थी। जो मिला पढ़ डाला, चट कर जाते थे किताबों को। और शायद यही वजह रही कि सब भाई बहनों में से सिर्फ भीमराव ही हाई स्कूल में पहुंचे, बाकी सब लोग पिछड़ गए। लेकिन पढ़ाई को उन्होंने सीरियसली लेना शुरू कर दिया जब उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। क्या था ये इंसिडेंट, ये मैं आपको एक ब्रेक के बाद बताने वाला हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के कुछ किस्सों को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ रेडियो 24/7 लाइव के जरिए। आप बस सुनते रहिए लेजेंड्स समर के साथ।
0: न जाने कितनी यादें इनका पीछा करती होंगी, और इनकी जिंदगी में सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं होता। डैडी, इसी ख्याल पर शालू ने एक नज़्म लिखी है, वो सुनिए।
2: सुनाओ बेटी।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: हाँ जी, स्वागत है आप सभी का रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स, में हूँ समर आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिनका नाम ही उनकी पहचान है, उनके बारे में बाकी कितने ही डॉक्यूमेंट लिए जाएं, क्योंकि उन्होंने खुद हमारे लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जो हमारी पहचान है, हमारा वजूद है, संविधान। हाँ जी, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की बात आज हम कर रहे हैं। राम जी सकपाल यानी बाबा साहेब के पिता एक बहुत बड़े कबीर भक्त थे, जो मैंने आपको बताया। उनके घर में शाम को हर रोज भगवान की दियाबाती होती थी और आरती के बजाय संतों के भजन गाए जाते थे। मराठी पोएट्स संत तुकाराम और मुक्तेश्वर के कबीर के भजन गाए जाते थे। ऐसे में भीमराव भी यही सीख रहे थे, उनकी रिलीजियस विचारधारा भी बदल रही थी। वो एथीस्ट या कम्युनिस्ट बन रहे थे ये तो मालूम नहीं, मगर साल 1956 में 1956 में अपनी मौत से कुछ लम्हे पहले वो कबीर को गुनगुना रहे थे, चल कबीर तेरा भवसागर डेरा। उन्होंने खुद लिखा भी, आई वॉज बॉर्न हिंदू बट आई विल नॉट डाई हिंदू। हालांकि उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाया और दलितों के लिए एक अलग धर्म की परिभाषा सेट की, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। खैर साहब, माँ की मौत के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। इस बात से और भी ज्यादा आहत हो गए भीमराव। उनका बिल्कुल पढ़ाई का जी नहीं करता था। पिता कहते पढ़ लो, वो नहीं पढ़ते थे। और जब भी उनकी स्टेप मदर, उनकी सौतेली माँ, उनकी माँ के ऑर्नामेंट्स या कपड़े पहनती तो भीमराव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते, दुखी हो जाते। वो घर से भाग जाने की सोचने लगते। उन्होंने सोचा वो बॉम्बे चले जाएंगे और किसी कपड़ा मिल में काम कर लेंगे, पर घर में नहीं रहेंगे। लेकिन उसके लिए टिकट चाहिए होता और टिकट के लिए पैसे। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बुआ के पर्स से पैसे चुरा लेंगे। पैसे चुराने लगे और पर्स खोला तो उसमें बहुत कम पैसे थे। उनको बहुत दुख हुआ, बहुत रिग्रेट हुआ, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो खूब पढ़ेंगे और कुछ अच्छा काम करेंगे। और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। एक और वाकया जिसने उनकी लाइफ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला और अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी काम करने के इरादे को मजबूत किया, मैं बताऊंगा आपको एक ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए लेजेंड्स समर के साथ।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ। आज मैं आपको बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के कुछ लम्हे चुरा कर सुना रहा हूँ। चुरा कर क्यों, ये तो कई किताबों में, बस मैं चुन कर लाया हूँ। मैं अपने शब्द करेक्ट कर लेता हूँ, चुरा कर नहीं, चुन कर लाया हूँ। आपको ये शो कैसा लग रहा है, आप इन किस्सों से कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं, मुझे सब कुछ बताइएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। हाँ, तो मैं आपको अम्बेडकर साहब के उस किस्से का जिक्र करने वाला था जिसने बहुत डीप इनसाइट तक उन्हें प्रभावित किया। ये बात तब की है जब उनके पिता रिटायरमेंट के बाद कोरेगांव में एक क्लर्क की नौकरी कर रहे थे। उनका परिवार सतारा में था तो पिता ने कहा गर्मी की छुट्टियों में यहाँ आ जाओ कोरेगांव। उस वक्त भीमराव 9 साल के थे, अपने बड़े भाई और एक भतीजे के साथ पिता के पास छुट्टियां बिताने निकल पड़े। वो तय हुआ कि सतारा से ट्रेन पकड़ी जाएगी, लेकिन चूंकि पहली बार ट्रेन का सफर तय करना था तो ऐसे कैसे चले जाते। इंग्लिश बाबुओं जैसी शर्ट लाई गई, नए नए जूते लाए गए, नई चमकदार नकदार टोपी, गोटेदार रेशमी धोतियां पहनी और तब ट्रेन में इठलाते हुए बाबू साहबों की तरह वो चढ़ गए। अच्छा, इससे पहले स्टेशन पर एक गिलास शिकंजी भी पी थी उन्होंने। ट्रेन की यात्रा बड़ी मजेदार रही। छुक छुक छुक छुक चलता भाप का इंजन, सीटी बजाता हुआ, खिड़की से आती हवा, ऐसा सफर पहले कभी नहीं किया था उन्होंने। मैसूर रेलवे स्टेशन पर उतरे जहां से कोरेगांव जाना था, तो उन्होंने देखा कि उनको लेने कोई स्टेशन नहीं पहुंचा है। अब डर लगने लगा, सारा मजा काफूर हो गया। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बड़े भाई के साथ स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे, उसे सारा माजरा बताया। उसने उनको प्यार से कहा कि यहाँ से बैलगाड़ियां जाती हैं जो कोरेगांव ले जाती हैं, पहुंच जाओ, सभी ऐसे ही जाते हैं। फिर उसने और ज्यादा पूछताछ करनी शुरू की कि कहां से आए हो, किसके पास जाना है। तब स्टेशन मास्टर को मालूम हुआ कि ये लोग लोअर कास्ट के हैं। बस वहीं स्टेशन मास्टर के तेवर बदल गए, उसने उनको भगा दिया। वो उनको कोई ब्राह्मण यानी अपर कास्ट के लड़के समझा था, उनके कपड़ों और बात करने के लहजे से ऐसे लगता था। खैर साहब, बाहर आए स्टेशन के तो क्या हुआ, एक ब्रेक के बाद बताता हूँ, मेरा इंतजार कीजिएगा, अभी कहानी में थोड़ा और दर्द है। हाँ, एक अलग सी टीस है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम आज के जमाने में रहने वाले लोग इस दर्द को उस तरह से कहाँ महसूस कर पाएंगे। जिसने इसे झेला है वो जानता है। मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर भीमराव अंबेडकर की पूरी कहानी आप तक पहुंचा रहा हूँ। बाबा साहेब की कहानी सुनते रहिए मेरी सुबानी।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव आप सुन रहे हैं, मैं हूं समर और मैं सुना रहा था आपको कहानी भीमराव अंबेडकर साहब की, अ सोशल रिफॉर्मर भीमराव अंबेडकर। अपने पिताजी के साथ कोरेगांव में छुट्टी मनाने के लिए ट्रेन की यात्रा करके भाई और भतीजे के साथ मैसूर रेलवे स्टेशन वो पहुंच गए। स्टेशन मास्टर को यूं ही मालूम हुआ कि वो लोग लोअर कास्ट के हैं तो उन्हें दुत्कार कर भगा दिया। तीनों लोग पहुंच गए बाहर, ये जानकर कि वो लोग नीची जात के हैं कोई भी गाड़ीवान उन्हें अपनी बैलगाड़ी में बिठाने को राजी नहीं हुआ। बहुत मिन्नतें करने पर एक तैयार हुआ, लेकिन उसने भी शर्त रखी कि वो गाड़ी नहीं चलाएगा, बैल उनको हांकने होंगे, अलबत्ता वो पैदल पैदल नीचे बैलगाड़ी के साथ चल लेगा। बताइए कितनी हैरानी की बात है। खैर साहब, घर पहुंचे तो पिताजी इनको आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई सूचना ही नहीं थी कि ये लोग आ रहे हैं। वो चिट्ठी जो इन लोगों ने अपने पिताजी को अपने आने की खबर देने को लिखी थी, वो उन तक पहुंची ही नहीं थी। उनके पहुंचने के बाद वो चिट्ठी वहां पहुंची थी। खैर, उन दिनों साधन सीमित हुआ करते थे, सो ऐसा कई बार हो जाया करता था। घर तो पहुंच गए वो, लेकिन भीमराव के नन्हे दिल में ये बातें घर कर गईं। उनको छुआछूत और जातिवाद से नफरत होने लगी। वो इसके खिलाफ कुछ करने की सोचने लगे। इन्हीं सब मुसीबतों से जूझते हुए ये अपने एक ब्राह्मण मास्टर जी से इंस्पायर हुए और उन्होंने अपना सरनेम बदलकर भीमराव अंबावाड़ीकर कर लिया, यानी सकपाल हटा लिया, अपने गांव अंबावाड़ी के नाम पर रख लिया अंबावाड़ीकर। इसके बाद और इसमें बदलाव हुए और इसे अंबेडकर कर लिया। इसके बाद इनकी पूरी फैमिली बॉम्बे चली आई, जहां भीमराव अंबेडकर को फेमस एल्फिंस्टन कॉलेज में हाई स्कूल में दाखिला मिल गया। वो अपनी कम्युनिटी में पहले पर्सन थे जिन्हें इस तरह का मौका मिला। मुंबई में परेल इलाके के एक कमरे के घर में ये लोग रहा करते थे, एक कमरे का घर था वो। दिन भर घर में इतने मेंबर्स होते, शोर शराबा होता, भीमराव पढ़ नहीं पाते थे, तो इनके पिताजी इन्हें रात के 2 बजे उठा दिया करते थे। तब बहुत शांति हुआ करती थी, सब गुप्त अंधेरे की ओर जाते हुए नींद में गुम होते थे और भीमराव किताबों में उजाला खोजते थे। उनके पिताजी रामजी सकपाल ने बहुत मेहनत की इस सब में, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि बाबा साहेब ने एक बार शिकायती अंदाज में एक स्पीच में कहा था कि मेरे पिताजी को मेरे जन्म की तारीख भी याद नहीं थी। उन्होंने अंदाजे से 14 अप्रैल लिखवा दी, बस ये याद था कि मैं रात को 12 बजे पैदा हुआ था। खैर, भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती हम सब 14 अप्रैल को मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के उस पार बाबा साहेब के जीवन की कुछ और पहलुओं को, कुछ और घटनाओं को और किस्सों को लेकर आऊंगा मैं। आप सुनते रहिएगा समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से
1: कहानियां उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
2: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। गोल सा चेहरा, गोल चश्मा, भरा पूरा गदबदाया सा बदन, पैंट कोट पहने एलीट अंदाज में बाबा साहेब अंबेडकर, यही तस्वीर सामने आती है ना। सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि जिंदगी इतनी खराब गुजरी थी उनकी, लेकिन चुपचाप सभी मुसीबतों को पार करते रहे वो और आगे बढ़ते रहे। हाई स्कूल के बाद जब बॉम्बे कॉलेज में दाखिला लिया उन्होंने, तो वहाँ उनको मिले बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजीराव तृतीय, सयाजीराव थर्ड। बाबा साहेब वहाँ बीए करने आए थे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में। महाराज सयाजीराव जी सोशल रिफॉर्मर थे, वो अनटचेबिलिटी जैसी बुराइयां दूर करना चाहते थे। वो बाबा साहेब की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए और उनकी आगे की स्टडीज को उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया। आगे की स्टडीज भी कहां की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन एक शर्त थी कि पढ़ाई पूरी होने के बाद ये बड़ौदा रियासत में ही काम करेंगे। कोलंबिया से एमए करने के बाद ये लंदन पहुंचे, वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स पढ़ने के साथ साथ लॉ भी करने लगे। बाबा साहेब लंदन में दिन दिन भर लाइब्रेरी में बैठे बस पढ़ते ही रहते थे। एक दिन वो चुपके से ब्रेड का एक पीस खा रहे थे, लाइब्रेरी ने देखा और उन पर चिल्लाया कि वो कैफेटेरिया में जाकर क्यों नहीं खाते, ये कोई जगह है, चुपके चुपके खा रहे हो, अगर यही तुमने फिर से किया तो फाइन देना होगा और साथ ही मेंबरशिप भी खत्म कर दी जाएगी तुम्हारी। बाबा साहेब बहुत डर गए, उन्होंने लाइब्रेरियन से माफी मांगी और कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लंच कर सकूं, इसलिए यहां बैठकर पढ़ता रहता हूं, आज भूख लगी तो ये ब्रेड खा ली, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए। लाइब्रेरियन ने यह सुना तो बड़ा दुखी हुआ और बोला, आज से तुम यहाँ लाइब्रेरी में दिन भर नहीं बैठोगे, लंच के वक्त मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे और मेरे साथ मेरा लंच शेयर करोगे। मेरे दिमाग में ये कहानी पढ़कर यही आया कि भले लोग हर जगह हैं दुनिया में, घर ठीक से पहचान लें तो। ये लाइब्रेरियन एक ज्यू था, यहूदी था, और ज्यूज के प्रति बाबा साहेब के दिल में हमेशा एक श्रद्धा रही। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौटने के बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: ग्रेट थिंकर सोशल एक्टिविस्ट बाबा साहेब अंबेडकर की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। यह है लेजेंड्स की अचीवर सीरीज। इस वक्त मैं इस बात के साथ शुरू करना चाहूंगा कि बाबा साहेब की पर्सनल लाइब्रेरी कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। जी 50,000 से ज्यादा किताबें किसी के पास उसके घर में हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। किसी की पर्सनल लाइब्रेरी इतनी बड़ी नहीं है। लंदन में थे बाबा साहेब के बीच में ही इनकी स्कॉलरशिप की मियाद खत्म हो गई, साथ ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी चढ़ गया, तो इन्हें अधूरी पढ़ाई छोड़कर आना पड़ा और पहले से ही तय किए गए वादे के मुताबिक बड़ौदा रियासत में काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। महाराजा के मिलिट्री सेक्रेटरी बन गए, लेकिन यहाँ भी अक्सर उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ा। नतीजतन यहाँ से उन्होंने ये जॉब छोड़ दिया और बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में सिडनीहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में वो पढ़ाने लगे, लेकिन यहाँ भी इनके साथ वही व्यवहार लोगों ने किया, लोअर कास्ट वाला व्यवहार। यहीं से भीमराव अम्बेडकर ने दलित राइट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश लोगों के सामने ये बात रखी कि रिलीजियस माइनॉरिटीज और अनटचेबल्स के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए इलेक्शंस में। ये साल था 1919 का, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट की नींव रखी जा रही थी। तो इस बात के लिए महात्मा गांधी से उनके बहुत मतभेद भी हुए। गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंदुओं को भी विभाजित किया जाए, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर साफ कहते थे, इंडियन कास्ट सिस्टम इज नॉट डिविजन ऑफ लेबर बट इट इज डिविजन ऑफ लेबरर्स। बात एकदम सही है। यहाँ उन्होंने एक मराठी न्यूज़पेपर भी निकाला जिसमें वो दलितों के अधिकारों की बात करते थे। इस बीच उन पर नजर पड़ी कोल्हापुर रियासत के महाराज साहब की। उन्होंने उनकी पढ़ाई जारी रखने को उनको स्पॉन्सर किया और लंदन पहुंचा दिया। फिर से वहां से पढ़कर लौटे 1924 में, दलित अधिकारों के लिए वो काम करने लगे। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दलित राइट्स के लिए समझाते रहे। इवन जब इंडिया नेशनल कांग्रेस बना रही थी तब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दलित राइट्स के लिए समझाते रहे। इवन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस मना कर देती थी कुछ डिस्कशन में भाग लेने से, ये आगे बढ़कर जाते। ऐसा ही हुआ जब साइमन कमीशन आया। इन्होंने अपनी दो पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाई, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के आगे टिक पाना मुश्किल था, मगर इनका विरोध जारी था। 1932 में जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की घोषणा की तो बापू नाराज हो गए। उन्होंने फास्ट शुरू कर दिया। इन दोनों के बीच यानी बापू और बाबा साहेब के बीच जंग छिड़ गई थी, लेकिन ये विचारों की जंग थी। एक दूसरे का सम्मान दोनों ही किया करते थे, और मैं भी आपका सम्मान करते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बाबा साहेब अम्बेडकर की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी रेडियो 24/7 लाइव पर। सुनते रहिए।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वेलकम बैक। आप सभी सुन रहे हैं लेजेंड्स के अचीवर सीरीज। आज बाबा साहेब अंबेडकर की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। विचारों के मतभेद की मैंने बात की। मतभेद कितना भी हो, अगर व्यक्ति इंटेलिजेंट और पढ़ा लिखा हो तो बेहद काम का भी होगा और देश हित में बात भी सोचेगा, है ना। बाबा साहेब की प्रतिभा को बड़े गौर से बहुत पहले नेहरू जी नोटिस कर चुके थे। जैसे ही भारत आजाद हुआ, उन्होंने सबसे पहले भीमराव अंबेडकर को झट से लॉ एंड सोशल जस्टिस मिनिस्टर बना दिया। इसके बाद जल्दी ही भारत के संविधान बनाने का जिम्मा इन्हें सौंप दिया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बन गए वो। लाजवाब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को मिला, लेकिन हमारे बाबा साहेब इसमें भी ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि असली डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी के बिना कुछ भी नहीं है। अच्छा, संविधान के निर्माण के दौरान एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ। संविधान में भारत की कौन कौन सी भाषाएं डाली जाएं, इस पर बड़ा बवाल हुआ। बाबा साहेब चाहते थे कि संस्कृत को संविधान में डाला जाए। मेंबर्स ने इसका विरोध किया और उनकी तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी को बोलने को कहा गया। उन्होंने संस्कृत में ही अच्छा खासा ज्ञान भीमराव अंबेडकर साहब को दे दिया। बाबा साहेब कैसे मानते भला शास्त्री जी के साथ शास्त्रार्थ कर सकते थे। इतनी शुद्ध और फ्लुएंट संस्कृत बोली कि सब मुंह फाड़े देखने लगे। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कितनी नॉलेज थी अंबेडकर साहब को। तो चलिए यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, मैं ब्रेक के उस पार मिलूंगा।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेल, मैं जानता हूँ कि सब कुछ बाबा साहेब के बारे में कह देना मुश्किल है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में अंबेडकर साहब का एक बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने ही इंडिया में वर्किंग आवर्स को 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया। 14 घंटे, बाप रे, बहुत ज्यादा थे। अंबेडकर साहब की बायोग्राफी आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। वही थे जिन्होंने भारत के दो स्टेट मध्य प्रदेश और बिहार को डिवाइड करके दो बनाने की बात कही थी। हालांकि उनकी बात को माना काफी बाद में गया। जितना कहूं उतना ही कम है। पढ़ाई के बारे में तो मैं आपको बताना नहीं चाहता कि अपनी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दौरान उन्होंने कितनी पढ़ाई की, कितने कोर्सेज किए। जब वो महज 14-15 वर्ष के थे तो उनकी शादी हो गई थी रमाबाई से। रमाबाई काफी बीमार रहा करती थी और 1935 में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट खत्म कर दिया बाबा साहेब ने, तो वो बीमार रहने लगे। उन दिनों बॉम्बे गए ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां एक डॉक्टर मिली जो इनके दिल की डॉक्टर बन गई, डॉक्टर शारदा कबीर। इनसे इन्होंने शादी कर ली और नाम बदलकर सविता अम्बेडकर बन गई, लेकिन लोग इन्हें माई के नाम से जानते रहे। माई ने बाबा की बहुत सेवा की और इस तरह से आखिरी सांस तक वो उनके साथ रहीं। बाबा साहेब 1956 में इस दुनिया फानी को अलविदा कह गए, लेकिन दुनिया उन्हें कभी अलविदा नहीं कह पाई। चलते चलते एक किस्सा सुनाऊंगा। भारत की आजादी से पहले बाबा साहेब ने कुछ केसेस भी लड़े अदालत में। एक बार एक दैनिक पेपर में दो केस की खबरें थी, एक जिसमें 28,000 रुपए का मामला था जो उन दिनों बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, और दूसरा केस था एक मजदूर का जिसकी सैलरी 24 रुपया थी। पहला केस जिन्ना लड़ रहे थे और दूसरा अंबेडकर। जिन्ना बड़े लॉयर थे, मगर एक बड़ी शख्सियत बनकर बाबा साहेब अंबेडकर निकले इस केस के बाद। उनको हमारा सलाम। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाइएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाइएगा, और कुछ ऐसा कर जाइएगा कि लोग आपको याद रखें, याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh Mehra.
3: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 Live.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh, man.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: से बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करें, तो फिर नजर झुका के करें।
1: तारे

ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते हैं तो तेरे लिए लिखते।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल. इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20. नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स.
1: बिल्कुल सही पहचाना, ये है मस्ती टॉप चार्ट्स और मस्ती टॉप चार्ट्स ऑन अ ब्यूटीफुल थर्सडे इवनिंग. जी हाँ, स्वागत स्वागत स्वागत. कौन कर रहा है स्वागत? अरे अगर आज भी मेरा नाम पूछोगे तो मैं जाऊंगी पूरे के पूरे 17 साल पीछे और कहूंगी हे भूल गए मुझे, पहचाना नहीं मुझे.
0: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल.
1: जी हाँ, योर डार्लिंग इज राइट ऑन द एयरवेव्स. आप जानते हैं पिछले कुछ हफ्ते से हमने फ्राइडे से शिफ्ट करके इस शो को कर दिया है थर्सडे पर. और थर्सडे को क्यों क्यों क्यों? हाँ भाई, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो फ्राइडे को पार्टी नहीं करते. राइट, रेडियो मस्ती 24/7, इट्स टाइम फॉर द मस्ती टॉप चार्ट्स. एंड मस्ती टॉप चार्ट्स पर ऑफ कोर्स गाने चलेंगे पूरे पूरे 20 और आपको पूरे हफ्ते का ऊपर कौन नीचे कौन बाहर कौन अंदर कौन सारी की सारी कहानियां साथ साथ में सुनाएगा कौन? Of course, the one and only Renuka. Welcome once again, guys. This is Radio Mossy 24/7, absolutely the only live Bollywood station across Southeast Asia and, of course, a part of

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: they are spicy and they are happening. Join us on Masti.
1: यार क्या गाना है. मैं तो कहती हूँ मुझे ये टॉप 20 ना पूरी जिंदगी वाले टॉप 20 शुरू कर देने चाहिए. ये टॉप चार्ट्स में उतना मजा तो नहीं आता. What's say?
0: Radio Masi 24/7 absolutely live from the studios is Rinuka with you. जी हाँ, मसी टॉप चार्ट्स थर्सडे की शाम 23 तारीख जुलाई के महीने की 7 महीने खत्म होने को आए हैं और 8वां महीना लगने को है. जी नहीं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं साल की. आप कुछ और ना सोचें इस टाइम पर, उन चीजों के बारे में हम मस्ती मैडनेस पर बात करेंगे ना कल सुबह. रेडियो मसी 24/7 पर ताजा ताजा खबर फ्रॉम द बॉलीवुड इज दैट दो अच्छे बच्चे, जी हाँ, उनकी एक फिल्म अब बनने वाली है अनुभव सिन्हा के साथ. कौन है ये अच्छे बच्चे? Well, they're Tiger Shroff and Vidyut Jamwal. I must say, both of them very, very grounded people. जब भी इनसे मिलो ऐसा लगता है वाह यार, लगता ही नहीं कि इतनी लड़ाइयां कर सकते हैं ऑन स्क्रीन, राइट? सो दिस फिल्म ऑब्वियसली इज नाउ बीइंग डिस्कस्ड एंड दैट्स द नेक्स्ट प्रोजेक्ट विद दीज टू बिगेस्ट एक्शन स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री. फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा उनको एब्सोल्युटली साइन कर चुके हैं और साथ ही साथ में इसको बैक कौन कर रहा है? Well, this is भूषण कुमार of टी सीरीज एंड इज गोइंग टू बी एन आउट एंड आउट एक्शन एंटर Tena, who likes action? Well, पता कुछ ऐसा लगा है कि टीम ने लॉक किया है an idea that will bring Tiger and Vidyut together. कभी भी ऐसी फिल्म पहले नहीं देखी गई है. वैसे भी आजकल जितनी भी फिल्में आते हैं कहते हैं ऐसा तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा. अरे भाई, अगर पहले देखा होगा तो आप ही कोर्ट केसेस में पकड़े जाओगे, क्योंकि हमने देखा होगा तो इसका मतलब है कि आपने कहीं से कॉपी किया होगा, राइट? तो बिल्कुल अच्छी बात है, ओरिजिनल साउंड कर रहा है, आइडिया को लॉक कर दिया गया है, दोनों ऑन बोर्ड हैं एंड इट इज एन आउट एंड आउट एक्शन फिल्म कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एक्टर्स. वेरी वेरी एक्साइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजन है फिल्म की एंड एन इंटेंशन इज टू क्रिएट अ हाई स्केल एक्शन एंटरटेनर दैट गिव्स बोथ एक्टर्स इनफ स्पेस टू शोकेस देयर स्ट्रेंथ्स. तो भाई इनकी स्ट्रेंथ क्या है? लड़ाइयां करना, उछलना, हवा में कूदना और कैमरास को थोड़ा सा आराम देना, जैसे कि वेलकम. जी हाँ, ये हमारा गाना नंबर 19 कमिंग अप नेक्स्ट रेडियो मस्ती 24/7 पर फॉलोड बाय 18. वाह कितना रोमांटिक गाना है. ओए होए, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक. नहीं, इन द तबला एज आई ऑलवेज से इज the highlight of this gana. That is song number 18 coming up next. Radio Masi 24/7 par with Renuka. Aap atke hain yahi par 8 baje tak, kahin jana mat.
2: Hit us on the gram, it's Radio Masi 24/7, and don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Masi 24/7 Singapore.
3: Check it out.
2: Trending song number 19.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: They are fresh. They are hot.

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20. नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स.
1: Trending song, number 18.

0: अब आंखें बंद करके ना झूमना बंद करो। रेडियो मसी 24/7 पर चल रहा है मसी टॉप चार्ट्स या फुल हंगामे वाला शो, जहां पर हम बिल्कुल लोगों को आराम नहीं करने देते।
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: Masti Top 20, Renuka ke saath mein. और चल रहा है मस्ती 24/7। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम बातें करते हैं बड़ी सारी बातें, क्योंकि यही एक शो मुझे मिलता है शाम को। जी हाँ, पूरे हफ्ते में जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, और साथ में अगर बोलते हैं रेणुका सारी खबरें निकाल डालो, जितनी खबरें तुमने पढ़ी है, सुनी है, देखी है, सब निकाल डालो, तो बिल्कुल यही है। दिस इज माई टाइम एंड दिस इज व्हेन आई वांट टू टेल यू कि मैंने ना प्रेडिक्ट किया था, और मैं जो चीज प्रेडिक्ट करती हूँ ना भारतीय फिल्मों के बारे में, वेल कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती डार्लिंग्स, वो डेफिनेटली आगे चलता है, बढ़ता है। मैंने कहा था धमाल 4 के आने से पहले कि भाई साहब एक ऐसी फिल्म है ये जिसको मैं कभी मिस नहीं करना चाहती, एंड गेस व्हाट द अर्निंग्स आर, 180 करोड़ तक पहुंच चुका है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों में। नॉट टू बैड। हाँ, आप जानते हैं अजय देवगन की धमाल 4, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू होल्ड द ग्राउंड। लास्ट वीक मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा डर है कि ओडिसी, जी हाँ ओडिसी, जो अर्बन ऑडियंसेस को और काफी प्रीमियम स्क्रीन्स को डोमिनेट करने वाली है, रिलीज होते ही धमाल 4 का क्या होगा। लेकिन यू नो व्हाट, धमाल 4 कंटिन्यूज टू परफॉर्म वेल अक्रॉस मास सर्किट्स, एंड इस समय 180 करोड़ के पास, नॉट बैड। सीखो सीखो सीखो। लेकिन यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं अगले गाने से।

0: है ये गाना है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। 17 नंबर को यूं चिपक के बैठा है कि लगता है यार छोड़ दे, ऊपर चला जा, नीचे चला जा, ना ना ना ना। रेडियो मस्ती 24/7 पर, जैसे कि मैंने कहा, मेरे से पूछा करो बेटा कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी नहीं, कौन सी चलेगी कौन सी नहीं। मुझे लगता है यू नो व्हाट, सारे फिल्मों को रिलीज होने से पहले ना मुझसे आके मिलना चाहिए। पता है क्यों? बिकॉज द मोमेंट दे मीट मी आई कैन टेल देम कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। एंड बेटा आई एम लाइक यू नो द नॉस्ट्रोडेमस ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। नया नाम रखना चाहिए सीरियसली। ला करते करते आगे बढ़ेंगे। दिस इज दी मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर कमिंग अप नेक्स्ट। बिफोर आई प्ले गाना नंबर 17 फॉर यू राइट हियर राइट नाउ रेणुका विद यू गाइस, दिस इज मस्ती टॉप चार्ट।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: इट्स टाइम फॉर
1: मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 17।

0: There's something different about this gana, isn't it? Chapatilak sab.
1: Must be top 20 Bollywood chart busters of the week. Full on Renuka style. Renuka!
0: And of course, it is your girl Renuka on the Airwaves Radio Masti 24/7. पर इस समय 5:38 हो रहे हैं और मैं बिल्कुल आपके साथ यहाँ पर जमी हुई हूँ पूरे 5 बजे से और गाने चल रहे हैं टॉप 20 ऑफ द वीक. आपको याद है मैंने एक बार बताया था आपको कि अश्नीर ग्रोवर, जी हाँ, उसका बायोपिक बन रहा है और आमिर खान जाके बार बार उस बंदे के साथ मिल रहा है. सो लग रहा है कि वो ही बनने वाला है. एंड देन लेटर ऑफ कोर्स इट वाज अनाउंस्ड. लेकिन डिस्कशंस जो चल रहे थे अराउंड द लीडिंग एक्टर, वेल, उसके बाद इमरान खान ने बोला नहीं, मैं तो हुई नहीं उस प्रोजेक्ट में, आमिर खान है उस प्रोजेक्ट में एज अ मेन लीड. बट लगता है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने भी इस टाइम पर कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस विद द फिल्म मेकर राहुल मोदी के साथ में एंड प्रोड्यूसर कपूर के साथ में कुछ बातें मेरी नहीं जमी, इसी को देखकर शायद उन्होंने निकलने का फैसला किया है या नहीं किया है. एक बहुत ही मेजर कास्टिंग स्टार, जी हाँ, रूमर है या नहीं है तो समय ही बताएगा, लेकिन सुपरस्टार आमिर खान ने स्टेप डाउन किया है फ्रॉम द मच एंटिसिपेटेड बायोपिक ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड शार्क टैंक इंडिया जज अश्नीर ग्रोवर. जी हाँ, पता कुछ ऐसा लगा है कि कुछ डिटेल्स निकल के आ रहे हैं. आमिर बहुत ही फैसिनेटेड है बाय द वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप्स एंड ही वॉज एब्सोल्यूटली कीन टू टेक इन टू द जोन विद द अश्नीर ग्रोवर बायोपिक. लेकिन फिर क्या हुआ? He sat on the script and developed it to the best of his sensibilities or eventually he ended up having creative differences. कि नहीं ऐसे करते हैं. राहुल मोदी ने बोला, भाई देख, मूवी तो मेरी है, करेंगे तो ऐसे ही. लेकिन उसने कहा, नहीं, मूवी में एक्ट मैं कर रहा हूँ, इसीलिए करेंगे ऐसे. Well, no Dilruba came in that case, but definitely exit door जरूर सामने आ गया. And the high profile exit, film की core team ने कहा, never mind, film तो आगे जाएगी ही. And उसके बाद में, of course, श्रद्धा कपूर जो है co-act producer as well, she said, मैं तो leading lady बनूंगी, मैं तो माधुरी जैन ग्रोवर बनूंगी, अश्नीर की बीवी, and as a co-producer, मैं definitely committed रहूंगी. और खान चला भी जाए या ना चला जाए, हम किसी और को लेकर आएंगे. अब कौन आएगा यहाँ पर, ये तो मैं ही आपको बताऊंगी ना इन द कमिंग वीक्स. लेकिन फिलहाल के लिए गाना कौन सा यहाँ पर आएगा, अभी भी आपने सुना था इस गाना में सोला फॉलोड बाय अनदर ब्यूटीफुल रेट्रो एंड उसके बाद वेल गाना नंबर 15 भी आएगा. बट फिलहाल के लिए रेडियो मसी 24/7 पर रेणुका को लेना पड़ेगा छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ताकि आप इन गानों को सुन सके, है ना या है ना.
2: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page. Radio Musti 24/7 Singapore.
3: Check it out.
2: Trending song. Number 16.
4: Meri aankhein soti hain, magar ye dil jaagta hai. Hai meri

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Bollywood Flashback.

0: लंबा गाना फॉर श्योर, बट व्हाट एन अमेजिंग ट्रैक, राइट? रेडियो मसी 24/7, इट इज टाइम फॉर मसी टॉप चार्ट्स का अगला गाना, विच इज गोइंग टू बी नंबर 15.
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग.
0: फ्रेश, हॉट, स्पाइसी, हैपनिंग, साउंड्स लाइक द जॉक्स ऑफ रेडियो मसी 24/7, है ना, है ना, है ना. तो भाई चलिए, 6 बजने वाले हैं, उससे पहले कुछ ही मिनट रह गए हैं, तो क्यों ना आपको एक अपडेट दिया जाए. हाल ही में अमिताभ बच्चन, जी हाँ, बात होती है जब भी इनकी हेल्थ की ना, तो मैं सबसे ज्यादा शायद घबरा जाती हूँ, सीरियसली. सो बॉलीवुड एंड द फैंस ऑफ अमिताभ बच्चन बहुत ही ज्यादा स्टेट ऑफ शॉक में रहे हाल ही में, जब हमारे अपने शहनशाह लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन ने ड्रॉप किया एक अपॉलिंग हेल्थ अपडेट. जी हाँ, हमेशा अपने फैंस, फॉलोअर्स के साथ में, रेगुलर पर्सनल ब्लॉग पोस्ट के साथ में बिग बी रहते हैं इन टच, लेकिन लेटेस्ट अपडेट उसकी वजह से काफी शॉक वेव्स पहुंच गए अक्रॉस सोशल मीडिया, क्योंकि उन्होंने हिंट किया एट अ सीक्रेट हॉस्पिटलाइजेशन, एक मेजर सर्जरी एंड अ वरीसम स्टे एट द आईसीयू. जी हाँ, वेल, हाल ही में एक बड़ा सा क्रिप्टिक सा ब्लॉग पोस्ट आया था. ही ओपन्ड अप अबाउट हिज मेडिकल सेटबैक्स एंड जर्नी टू रिकवरी, और अपने पोएटिक स्टाइल में 83 ईयर ओल्ड हमारे मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने कहा, In hospital, in a surgery, and in the ICU, under the care of professional doctors and medical staff, a discharge and a homecoming. लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो होम कमिंग पीरियड होता है ना, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, प्रैक्टिकली. यू आर अ रिवर्ड चैम्पियन एंड वन डे अ डिफीट स्टेयर्स एट यू, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ. लेकिन फिर उन्होंने कहा, मैं तो अर्जेंटीना की बात कर रहा था. Well, you know how it is. He did have a surgery हाल ही में, and of course, nobody knows the details as of now, but इतना जरूर पता लगा है कि उन्होंने सोचा कि मैं अपनी सर्जरी करा लेता हूँ, बाद में सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा. ऑफ कोर्स माय फैंस डिजर्व टू नो, राइट, बट नॉट द डिटेल्स. तो वेल, उस बात को हम साइड पर रखेंगे. द गुड थिंग इज दैट ही इज एब्सोल्युटली फाइन एंड ही इज बैक होम एंड ही इज रिकवरिंग एंड वी विल हैव मोर ऑफ हिम. तो आप थोड़ी सी बेली डांसिंग कर लो. मैं आती हूँ कुछ ही देर में वापस आपको 6 बजे के उस पार में मिलूंगी. ये गाना नंबर 15, जी हाँ, कमिंग अप नेक्स्ट रेडियो मस्ती 24/7 पर. स्टे ट्यून्ड.
2: हिट अस ऑन द ग्राम, इट्स रेडियो मस्ती 24/7, एंड डोंट फॉरगेट अ लाइक आवर एवर बजिंग फेसबुक पेज, रेडियो मस्ती 24/7 सिंगापुर. चेक इट आउट. Trending song number 15.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
2: दूसरा घंटा क्या कह रहे हो? दूसरा घंटा शुरू भी हो गया। दूसरा घंटा ओ बेटे। Welcome to all those people who just joined us, and this is Masti Top Charts. From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20. जी बिल्कुल, join तो आप कर ही चुके हैं, इसलिए तो आप ये बात सुन रहे हैं हमारी। Right or am I right? So भाई, मैं सोच रही हूँ कि इस घंटे में आपको वो बता दिया जाए कि आपको अपना टाइम निकालना है तो किस चीज के लिए निकालना है। जी हाँ, OTT releases जो आने वाले हैं उनके बारे में क्यों ना बात की जाए। As we are talking about Masti Top Charts, सारी नई चीजें आप यहाँ पर बिल्कुल सुनेंगे। दिस इज द वन एंड ओनली शो जहाँ पर पूरे के पूरे बॉलीवुड के काउंट डाउन चलते हैं। जी हाँ, और उस काउंट डाउन के साथ साथ आपकी और मेरी लड़ाई चलती है कि इस गाने को होना चाहिए इन टॉप 20 में या नहीं होना चाहिए। उसी के साथ में आई डू वांट टू से हेलो। जी हाँ, बड़े दिनों के बाद आए हो। आप जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। जिम शिम में हो या बाहर हो, मतलब लिखते रहो, और मैं जैसे बताओगे ना आप लोग मुझे कि आप जिम में हो, वैसे ही मैं बिल्कुल धीरे गाने चलाने लग जाऊंगी, रोमांटिक सॉफ्ट मेलोडीज। कहा ना मैंने, अगर मैं नहीं हूँ जिम में तो आप सबको भी मैं बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। आफ्टरऑल सिर्फ आप ही की सेहत क्यों अच्छी रहे। गंगा के साउंड ट्रैक से गाना नंबर 14 कमिंग अप नेक्स्ट। But as I promised, I will also tell you more about what are the OTT releases this week. जी हाँ, तो आज के दिन में रिलीज हुई है मुसाफिर कैफे, जो है बेस्ड ऑन दिव्या प्रकाश दुबे's बेस्ट सेलिंग नॉवल। और ये स्टोरी जो है ना, इट फॉलोज चंदर, जी हाँ विक्रांत मैसी, बड़े दिनों के बाद में एज ही नेविगेट्स लाइफ, हार्ट ब्रेक एंड सेल्फ डिस्कवरी थ्रू टू लाइफ ऑल्टरिंग रिलेशनशिप्स। एक है सुधा के साथ में जो है वेदिका पिंटो, और दूसरी है प्रीति के साथ में महिमा मकवामा, अक्रॉस भोपाल एंड मसूरी। दो दो, नॉट बैड।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।

0: इनकी आवाज तो सुनी है। अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
1: Good morning!
2: Trending song, number 13.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा पहले तो ये होता था कि भाई लगता था अच्छा भाई फिल्म रिलीज हो गई है, उसके कितने पैसे बनने वाले हैं पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में, फिर उसके बाद वो 100 करोड़ ये वो सब कुछ आने लग गया। आजकल प्रिडिक्शन होने लगती है, जी हाँ फोरकास्ट होने लगता है कि फिल्म जब आएगी चाहे एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद, एक महीने बाद, कितने पैसे कमाएगी इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ। दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर spicy and they are happening. Join us on Musty Radio Musty 24/7 Radio Ka ke saath mein chal raha hai Musty Top Charts. और यहाँ पर बात हो रही है आने वाली फिल्मों की। जी हाँ आने वाली फिल्मों में सबसे पहले फोरकास्ट यहाँ पर चल रहा है 12-17 करोड़ नेट का। जी हाँ पहले दिन का, नॉट इवन पहला हफ्ता। वी टॉकिंग अबाउट द सक्सेस ऑफ फिल्म्स लाइक सैयारा और सनम तेरी कसम। जी हाँ उनके री रिलीज से रिन्यू हुआ है कॉन्फिडेंस ऐसे ब्रांड में म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामाज। और उसमें सबसे ऊपर नाम किसका आता है, वही अपना किस मास्टर, कौन है वो बताओ ना, इमरान हाशमी। जी हाँ ही इज सिनोनिमस विद द स्पेस। 2010s में हमेशा एक ही नाम आता था, राइट? एंड वन ऑफ दीज टाइटल्स वाज आवारापन। आपको याद होगा इट वाज रिलीज्ड इन 2007, अ बॉक्स ऑफिस फेलियर एट दैट टाइम। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ऐसी कल्ट फॉलोइंग बन गई इस बंदे की एंड द बज इज हॉट फॉर द सीक्वल राइट नाउ। जब से अनाउंसमेंट हुई है, टीजर रिलीज हुआ हाल ही में, इट वॉज वेल रिसीव्ड एंड द फिल्म हैविंग अ गुड स्केल एंड अ हिंट ऑफ नॉस्टैल्जिया। जी हाँ म्यूजिक जो है काफी क्रूशियल, चाहे अब तक इतना कोई हैवी डोज नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि इस फिल्म से काफी ज्यादा लगाव इस समय, बहुत एक्सपेक्टेशन है। और इसी के साथ में एक फिल्म रिलीज हो रही है 14 अगस्त को, जी हाँ, और उसकी एक्सपेक्टेशन है 4-7 करोड़ नेट। अब आप जानते हैं अगर 14 अगस्त को कोई फिल्म रिलीज हो रही है तो डेफिनेटली उसमें पेट्रियोटिज्म तो होगा, और पेट्रियोटिज्म में हैं गिने चुने हमारे कुछ लोग। एक है उनमें से 2.5 किलो का हाथ, सनी देओल। जी हाँ ही सॉ अ मेजर रिवाइवल अपने करियर में विद अ मेगा ब्लॉकबस्टर सक्सेस ऑफ गदर 2 2023 में, और फिर उसी टाइम पर ओरिजिनल गदर जब अनाउंस हुई सून आफ्टर, उसकी एंटिसिपेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई। अब बात ये हो रही है कि ये वाली फिल्म में हम देखने वाले हैं बंटवारा 1947 में सनी देओल को। वेल देखने की बात यह है कि आगे जाएगी फिल्म नहीं जाएगी ये तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन जब हम बंटवारा की बात कर रहे हैं, 1947 की बात कर रहे हैं, तो बात कर लेते हैं अपने गाना नंबर 12 की।
3: क्या कमाल है,
2: मैं वापस आऊंगा।
3: क्या कमाल है
2: दिलजीत,
3: ना मुसीबतें ना मलाल है।
2: What an amazing track, talking about एक ऐसी दुनिया जहां पर कोई मुसीबत नहीं, कोई दुख नहीं, बंटवारा देखने के बाद में कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार। Well, the fact is it's an imagination, especially knowing what's happening in India at this point of time with the students movement as well. Taking a short break here. Nahi senti nahi hona hai, ye hamara full on masti full on energy wala show. I'm going to play a fantastic masti song of the hour taki aap nache jhume ash kare. Good evening everyone,
4: it's time for
0: masti song of the hour.

0: वाकई कमाल है, क्या कमाल है, क्या म्यूजिक है, क्या आवाज है, क्या डेप्थ है, क्या सोच है, और ये फिल्म इम्तियाज अली की, क्या कमाल है, एब्सोल्युटली गाइस।
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: Radio Masti 24/7 पर Masti Top Charts और Masti Top Charts पर Masti Top 20 का मतलब क्या होता है? बढ़िया बढ़िया गाने totally और बीच बीच में ऐसा धमाल वाले गाने कि आपको लगे ओए होए क्या शिफ्ट है। आपको पता है एक बात, हाल ही में बड़ी कमाल की बात ये हुई कि मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में एक रीजनल लैंग्वेज की फिल्म देख डाली, बिकॉज मुझसे रहा नहीं जा रहा, ठीक है, रहा नहीं जा रहा, आई मीन विच रेयरली हैपन्स विद मी, बट मुझसे वाकई रहा नहीं जा रहा था। मैंने सोचा यार दृश्यम, जी हाँ दृश्यम 3, जो कि हमारे प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है एंड दैट इज़ इन मलयालम, राइट, लेकिन रहा नहीं जा रहा यार, क्या करूँ मैं, हिंदी की फिल्म जो कि अक्टूबर में रिलीज होगी, ऑफकोर्स देखूंगी वो मैं, अजय देवगन एंड यू नो जिंग बैंग, बट द पॉइंट इज तब तक कैसे रह लूं मैं, विच इज वेरी सेल्डम, ऑलराइट लेट मी टेल यू। बट मैंने देख डाली, मतलब रात रात को आधा आधा घंटा कर करके 6 दिन में देख डाली मैंने उसमें सब टाइटल्स पढ़े, मैंने सब कुछ उसका, यू नो आई जस्ट कुडंट स्पेयर लीव इट, बट देन इवेंचुअली हुआ कुछ ऐसा कि मुझे पता लग गया है कि अब प्लॉट में क्या घुमावट आने वाली है, एंड आई मस्ट टेल यू गाइज, आई लव दृश्यम 1, आई लव दृश्यम 2, एंड नाउ दृश्यम 3 का जो क्लाइमैक्स है, ओए होए, कातिलाना है, मैसेकर, जी हाँ, अल्फा के साउंडट्रैक से फिलहाल दिस गाना इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन नंबर 11, एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू प्ले दैट फॉर यू राइट नाउ, फॉलोड बाय नंबर 10 व्हिच इज ऑलराइट रेडियो मस्ती 24/7। अब इश्क कमीना है या नहीं है ये तो आप सब अपने अपने व्यूज मुझे बता सकते हैं 9151893 पर, लेकिन फिलहाल के लिए हम गाना जरूर ये चलाएंगे नंबर 10 पर रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, कैसा चल रहा है आपका आपका ये शाम का मेरे साथ रहना, आ गया है वही टाइम जब मैं आपसे पूछती हूँ आज का गाना नंबर 1 कौन सा होने वाला है। वेल लेट मी सी इफ एनी वन ऑफ यू कैन गेस दैट राइट विदाउट मी गिविंग यू एनी हिंट, लेकिन फिलहाल के लिए छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक सुने, बैक टू बैक गाना नंबर 11 एंड 10 कमिंग अप नाउ।
2: हिट अस ऑन द ग्राम, इट्स रेडियो मस्ती 24/7 एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर एवर बजिंग फेसबुक पेज रेडियो मस्ती 24/7 सिंगापुर,
3: चेक इट आउट।
2: Trending song, number 11.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh mein
3: raho. Bina flight ticket khareede, duniya ka chakkar lagwayega kaun? Paparazzi se bhi tez gossips aapko laakar dega kaun? Kya baat hai? Aap to kaafi smart nikle. To suniye, saalon se ek tag Singapore tak aapko update rakhne wali aapki RJ Nupur ko Musti Mornings par. Tuesday, Wednesday and Thursday ko only on Radio Musti 24/7 live. Ye hai Musti Mornings meri jaan.
2: For show timings, check out the Radio Musti app now. Josh mein raho. Trending song number 10.
0: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: एक तरफ शो और एक तरफ साथ में बड़े सारे काम. जी हाँ, यही चल रहा है आज हमारे स्टूडियो पे रेडियो मसी 24/7 पर. रेनू का मल्टीटास्किंग, आई थॉट आई वाज ओनली होस्टिंग द शो टुडे, बट हे, जाओ ना यार, घर जाओ ना. अपनी टीम को बोल रही हूँ.
3: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती.
2: जान खा गए हैं, लेकिन वो बोलते हैं आप हमारी जान खा गए हो क्योंकि काम नहीं करेंगे टाइम से. तो आपको ये लगता है बॉस एम्प्लॉइज की जान खाते हैं या एम्प्लॉइज बॉस की जान खाता है? मतलब सीरियसली, आई समटाइम्स वंडर. बट रेडियो मसी 24/7 पर चल रहा है मसी टॉप चार्ट्स और यहाँ पर जी हाँ 7 बजने वाले हैं कुछ ही देर में. अभी तो खैर टाइम है, लेकिन इतना बता दूं कि अगला गाना जो मैं चलाने वाली हूँ ना, वेल, इट्स फ्रॉम द साउंड ट्रैक ऑफ पुराना वाला कॉकटेल. इट्स अ ब्यूटिफुल फ्लैश बैक गाना दैट आई एम गोना प्ले एंड फॉलोड बाय अ सॉन्ग जिस पर आई गेट ब्रिक बैट्स. एंड नाउ व्हाई डू आई गेट ब्रिक बैट्स, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट, बट ऑल आई कैन टेल यू इज लास्ट वीक दिस गाना वॉज ऑन नंबर 8 एंड दिस टाइम इट हैज स्लिप टू नंबर 9. हमने अपनी टीम के साथ में मिलकर बहुत बार सोचा निकिता, बहुत बार सोचा, एंड व्हाई आई एम टेकिंग हर नेम, शी नोज एब्सोल्युटली वेल, कि भाई देखो क्या होता है ना कि एक गाना आप सोचते हो बार बार कि ये गाना हमेशा इतना ज़्यादा फेमस, इतना ज़्यादा पॉपुलर रहा है, हमेशा टॉप चार्ट्स में रहा है, इज इट टाइम टू रिटायर दिस सॉन्ग. लेकिन फिर वो गाना आप सुनते हो और आप कहते हो नहीं यार, अभी क्यों रिटायर करना है, अभी तो ये बड़ा बढ़िया चल रहा है. एंड फिर उसके बाद में फिर से उसको डाला जाता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद में कोई बोल देता है यार पक गए यार, इस गाने को नंबर 20 गानों में से निकाल दो. लेकिन फिर आपका दिल पसीज जाता है और कहता है यार, इट वोंट बी राइट टू दैट पर्सन जिसने रिटायरमेंट तो अनाउंस कर दी है लेकिन अपने सारे पुराने टास्क जो है वो कंप्लीट कर रहा है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अरिजीत सिंह, नंबर 9 पे अटका हुआ ये वाला गाना. मैं भाग रही हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी तक कुछ नहीं बोलूंगी बहुत देर. हाँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर ब्रिक बैट्स वाला गाना मैंने इसका नाम रख दिया है. चलाओ तो प्रॉब्लम, ना चलाओ तो प्रॉब्लम. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ यू हैव रिटन दैट दिस शुड स्टिल कंटिन्यू टू बी नंबर 1 और नंबर 2, लेकिन आपने तो नंबर इसको 8-9 पे गिरा दिया. भाई साहब डिसाइड कर लो, मेरा ईमेल एड्रेस दे देती हूँ और मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही, भेज देना मुझे. अगले हफ्ते क्या करना है वही करूंगी एग्जैक्टली, अपना दिमाग चलाऊंगी ही नहीं.
0: बॉलीवुड फ्लैशबैक.

0: गहरा हुआ यार, पता है हर बार जब ये गाना सुनती हूँ ना, मन करता है नहीं यार इसको टॉप चार्ट्स में रहने ही दो, लेकिन फिर जब ये चलता है तो मैं कहती हूँ यार ये अभी भी यही है, जान खा गया ये वाला गाना। बट एनीवे, ऑन रेडियो मस्ती 24/7, डजंट दिस सॉन्ग काइंड ऑफ रिमाइंड यू ऑफ सूरज हुआ मध्यम और यू नो समथिंग लाइक दैट, शाहरुख खान की याद तो दिलाता ही है, नहीं?
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on. And there is one guy who we all like, Raghav Jual.
0: जी हाँ, one of the most talented young actors मैं कह सकती हूँ। आपने देखा ना उसको the bads of Bollywood में। जी बिल्कुल। So he started his career as a dancer, and Raghav इस समय बहुत ही उन कम नामों में से है who have successfully transitioned from television to cinema, right? और भाई तेरा स्टार है, that is the film, the first solo film that he is right now promoting and reflected on his journey. And फिर उसे पूछा गया भाई कौन है वो guiding force in the industry जिसको देख के आपको बहुत ज्यादा मतलब you know inspiration मिलती है, and obviously once you work with Shahrukh Khan, I doubt you can think of any other name. And that's exactly what Raghav Jual also did. He said, सिर्फ स्टार वाली चीज नहीं है यार, शाहरुख खान से मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है, एंड ही इज अ भंडार ऑफ विजडम, यू टेंड टू बिकम वाइज लाइक हिम। कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होता है, लाइक अभी मैं उनके पास गया था तो उन्होंने मुझे विजडम दिया कि बेटा कर तू रिलीज फिल्म, तू जा फुल आउट, किसी की मत सोच, अपनी फिल्म पे ध्यान दे, योर वर्क विल स्पीक फॉर यू। उन्हीं की वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई तेरा स्टार है जो फिल्म है उसको प्रीपोन करता हूँ, रिलीज करता हूँ, एंड यस ही इज गोइंग टू रिलीज इट ऑन द 30th ऑफ जुलाई। वेल लेट्स सपोर्ट दिस गाय, फ्रेंकली ही इज अ डिसाइपल ऑफ SRK, एज ही सेज मैं शागिर्द जैसा हूँ उनका, और बस आई एम ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम हिम। एक्चुअली शाहरुख खान, ही डज हैव अ लाइफ दैट वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम, राइट? वेल लेट्स वेट एंड वॉच, बट soon enough he is going to be sharing the screen with Shahrukh Khan in King as well. Ji haan, lekin abhi ke liye cinemas par jab bhai tera star hai aaye to well is bhai ko star bana do, acha ladka hai, hai na? Radio Masti 24/7 par up next is gana number 8. Welcome to the jungle, and I will welcome you 7 baje ke us par, all right?
2: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Trending song number 8.

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, Musti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's Top Chart Busters.
1: वेलकम जी हाँ बिल्कुल वेलकम टू 7 बजे के उस पार रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है द वन एंड ओनली जी हाँ विच इज कॉल्ड मस्ती टॉप चार्ट्स और मस्ती टॉप चार्ट्स पर आपको क्या क्या मिलता है वेल हॉटनेस मिलती है लेटेस्ट फ्रेशनेस मिलती है और भी बहुत कुछ मिलता है लेकिन सबसे बड़ी बात है रेणुका मिलती है आपको राइट Well, this is like a भंडार ऑफ बॉलीवुड की खबरें एंड अपडेट राइट बिकॉज मैंने कहा ना मुझे सिर्फ एक ही शो मिलता है शाम के टाइम पर उस शाम को मैं टोटली बॉलीवुडिश बनाना चाहती हूँ बिकॉज देखिए ना अगर पूरे हफ्ते पर एक नजर डाले तो मेरा एक शो होता है मंडे सुबह जहां पर मुझे बिल्कुल भी सीरियस होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता न्यूज पढ़ो बताओ आपको कि क्या चल रहा है सारी दुनिया में राइट एंड आई डू काइंड ऑफ वर्क हार्ड टू ब्रिंग दैट न्यूज अक्रॉस टू यू एंड फिर उसके बाद में मेरा टाइम आता है थर्सडे शाम को और थर्सडे नहीं ट्यूजडे शाम को हम डियर मस्ती दिल से में आप ही की चिट्ठियों का जवाब देने की कोशिश करते हैं ऑफ कोर्स वी डिस्कस क्या क्या इश्यूज हैं क्या रास्ता हो सकता है एंड ऑल दैट इट्स अ ब्यूटीफुल शो विच हैज टच द हार्ट्स ऑफ मैनी और वहां पर मुझे थोड़ा सा स्लॉट मिलता है जी हाँ जिसमें मुझे सिर्फ सीरियस बातें करनी होती है ठीक है आपकी चिट्ठियां पढ़नी होती है देन ऑफ कोर्स वेंसडे आई टेक माई डे ऑफ फ्रॉम द एयर वेव्स एंड थर्सडे आई एम बैक जी हाँ फुल ऑन मस्ती के मूड में और तब आता है मस्ती टॉप चार्ट्स और फिर फ्राइडे तो पूछो मत सुबह के टाइम पर जब मैं आती हूँ तो अंतरा जी मतलब गाने वो डिसाइड करती हैं न्यूज़ के लिए हम दोनों लड़ रहे होते हैं एंड इट्स लाइक अ मॉर्निंग शो राइट मॉर्निंग में यार थोड़ा मेरे को टाइम लगता है बाय द टाइम आई यू नो काइंड ऑफ वेक अप एंड आई गेट इन माय एक्शन राइट
2: गुलाबी साड़ी अणि लाली लाल लाल
1: साड़ी लाल लाल फ्रॉम धमाल धमाल धमाल धमाल धमाल धमाल बिकॉज इट्स धमाल 4 राइट एंड दिस इज गाना नंबर 7
2: गुलाबी साड़ी अणी लाली लाल लाल
1: Taking a short break here, उसके बाद मैं वापस आकर बताऊंगी पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई की पिटाई हुई जी हाँ there's a major पिटाई की खबर that has come in why what how I'll give you some खबर on that in just a little bit guys stay tuned radio Masi 24/7 you are tuned into Masi top charts with Rinnu
3: hit us on the gram It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musti 24/7 Singapore.
4: Check it out.
3: Trending song, number 7.

0: क्या होता है ओवर द इयर्स हम लोगों की इतनी ज्यादा एक रिलेशनशिप सा बन जाता है कि मुझे पता है एग्जैक्टली किस इंसान को कैसे इरिटेट करना है, कौन सा गाना चला के, एंड दैट्स व्हाट आई लव. सो राइट नाउ मेरा जो टारगेट है होपफुली वो इरिटेट, परेशान, दुखी होके अपने बालों को खींच रहा होगा. रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती टॉप चार्ट से गल्ला गुड़िया. वी ऑल लव दिस सॉन्ग, डोंट वी गाइस?
1: Musti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style. Renuka!
0: Is it right? It is your girl Renuka on the airwaves, guys. Darling or not, you all love me, don't you? Well, break से पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे अबाउट द साड़ी एंड द धमाल 4 का साउंड ट्रैक विच वॉज ऑन गाना नंबर 7. जी हाँ, और इस समय हम छठे गाने पर पहुंच रहे हैं विच इज धक धक गाना. बट उससे पहले मैंने जो आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगी खबर अबाउट पंकज तिवारी के बड़े भैया जिनकी हुई खूब सारी पटाई. जी हाँ, विजेंद्र नाथ तिवारी की बात कर रही हूँ मैं, हु इज पंकज त्रिपाठी एल्डर ब्रदर, एंड ही वॉज रिसेंटली अटैक्ड एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते गोपालगंज में. जी हाँ, बिहार की बात कर रही हूँ मैं. इवन दो दिस इंसिडेंट वॉज वेरी अनप्लेजेंट, पंकज त्रिपाठी वो जल्दी जल्दी भागे पटना एंड इज नाउ टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट, एंड ही सेज दैट ही डेफिनेटली ट्रस्ट्स द लीगल सिस्टम एंड लीगल राउट ही लेंगे, वो कुछ और नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि मेरे पास आई रियली लव माई ब्रदर, ऑफकोर्स मेरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा प्यार है मेरे अंदर, हम बात करते हैं एटलीस्ट वंस अ डे, एंड द इंसिडेंट मुझे बहुत इफेक्ट किया, लेकिन जस्टिस सिस्टम के चलते मैं और कुछ नहीं कहना चाहता. हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हमने किसी के लिए संसार में गलत किया ही नहीं, तो किस बात का डर. वो जो भी घटना है बहुत अप्रिय घटना है एंड नथिंग एल्स. जीवन में ये सब घटना चलती रहती है. वेल, सो विजेंद्र नाथ तिवारी बाय द वे वाज बीटन विद स्टिक्स एंड क्लब्स इन अ लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट बिहार में एक लैंड डिस्प्यूट के चलते, एंड द इवेंट अकर्ड एट ऑफकोर्स दिस एक्टर्स, बात करी पंकज त्रिपाठी की, एंसेस्ट्रल विलेज बेलसांड में विच इज लोकेटेड इन द बरौली टाउन ऑफ गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर हॉस्पिटलाइज किए गए तिवारी जी जो कि बड़े भाई हैं पंकज त्रिपाठी के, एट द गोपालगंज मॉडल हॉस्पिटल लेट एट नाइट, और उसके बाद उनको एक फैसिलिटी में ट्रांसफर किया गया पटना में फॉर फर्दर ट्रीटमेंट. अब देखनी बात यह है कि भाई पंकज त्रिपाठी इसके आगे क्या एक्शन लेते हैं. आफ्टर ऑल फैमिली इज फैमिली, राइट? और फैमिली के आगे कुछ भी नहीं, फैमिली तुम्हारा दिल होती है. धक धक करने लगा, माधुरी की याद आने लगा, है ना, है ना, है ना.
2: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
3: Check it out.
4: Trending song, number 6.

0: अरे नहीं नहीं, सपने में कहा, मैं तो रियलिटी में मिलती हूँ। रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है आपका हमारा एक ही शो जिसका नाम है
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप
0: 24/7 बाय द स्टूडियो क्लॉक एंड दिस इज रेनुका विद यू। अभी तक बस रह चुके हैं आप 5 गाने। जी हाँ, टॉप 20 में से 15 गाने आप सुन चुके हैं एंड 5 गानास विच आई एम गोइंग टू प्ले राइट नाउ टिल 8 इन द इवनिंग। वेल, और साथ साथ में खबरें, यू नो खबरों में द वे थिंग्स हैव चेंज्ड इज कि पहले प्री कोविड की बात कर रही हूँ मैं, वी यूज टू स्टिक टू फिल्में जो रिलीज हो रही हैं थिएटर्स में, वी यूज टू स्टिक टू यू नो ओनली मोस्टली आई वुड से हिंदी फिल्में एंड बॉलीवुड की बात करते थे हम, लेकिन द वे कोविड चेंज्ड एवरीथिंग। जी हाँ, पहली बात तो हम OTT के बारे में बहुत ज्यादा बात करने लगे। OTT really really really came in the forefront, just like our digital channel, right? Everything came in the forefront and all the पुराने जमाने के traditional media really went on the back foot. साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि दूसरी चीज ये हुई है कि north, south, east, west सारी की सारी जो फिल्में हैं, especially north and south, they have actually come together and therefore we've started talking a lot about Tollywood and about you know the films from the south, not just बॉलीवुड। एंड उसी के चलते एक फिल्म है जिसका नाम है टॉक्सिक। जी हाँ, टॉक्सिक। एंड टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, नाम से ही ऐसा लगता ना। तो यश है इसमें इन द लीड रोल एंड इट इज स्लेटेड टू रिलीज ऑन August 26th। अब बात यह है कि बड़ी बड़े स्क्रीन पर तो डेफिनेटली ये फिल्म रिलीज होगी और उसके प्रोड्यूसर है वेंकट नारायण एंड ही इज कॉन्फिडेंट दैट द ऑडियंस आर एक्चुअली गोइंग टू लव दिस फिल्म। क्यों? वेल ही सेज बड़ी एम्बिशियस सी फिल्म है, स्केल ही अलग है, ग्रैंडियर ही अलग है, स्टोरी टेलिंग ही अलग है। 100% ऑडियंस बहुत ही प्यार करने वाले हैं इस फिल्म के साथ में एंड सबसे बड़ी बात है दैट इट इज मेंट ओनली फॉर ग्रोन अप्स। एक्शन थ्रिलर को रिटन एंड डायरेक्टेड बाय गीतू मोहनदास एंड इट इज अबाउट फादर सन राइवलरी। तो उसमें है नयनतारा, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी एंड रुक्मिणी वसंत इन लीड रोल्स, अक्षय ओबेरॉय, सुदेव नायर, अमित तिवारी एंड बहुत सारे और लोग। अब देखने की बात यह है कि इस फिल्म को पहले रिलीज किया जा रहा है कन्नडा और इंग्लिश वर्जन में और उसके बाद रिलीज होगी ये फिल्म मलयालम, तेलुगु, हिंदी एंड तमिल में। चुनरी नहीं, टॉक्सिक नाम है उसका। ये गाना है जय जवानी तो इश्क होना ही था। जी हाँ, गाना नंबर 5 कमिंग अप नेक्स्ट। रेडियो मस्ती 24/7 पर सुनेंगे आप ये गाना एंड ऑफ कोर्स आई विल बी बैक विद सम मोर न्यूज़ इन जस्ट अ लिटिल बिट। स्टे ट्यून्ड गाइस।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 5।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
3: It's time for
4: Masti Song of the Hour.
5: Song of the Hour.

0: Indeed, an amazing, soulful, pyara sa gana, jise kehte hai na sunke, you just feel so calm, isn't it? Radio Masti 24/7 par, abhi aap sun rahe the Muna Bhai MBBS ka. That was the Masti song of the hour, My Choice. From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20. जी हाँ जी हाँ, समय रह गया है, कम गाने रह गए हैं, चार, और देखने की बात यह है कि आज कौन रहेगा नंबर वन. बताएंगे वो भी बताएंगे, लेकिन पहले एक खबर आपसे ऑब्वियसली डिस्कस करना चाहेंगे हम यहाँ पर कि भाई ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, एंड ऑब्वियसली इट हैज बीन इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ दी मैसेज देयर, एंड ऑफकोर्स हाल ही में जो वायलेंस और पुलिस एक्शन की बात बहुत ज्यादा सुर्खियों पर है, उसके बारे में आई जस्ट वांट टू गिव यू अ वेरी क्विक अपडेट. सो इन सॉलिडैरिटी विद द स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग एट जंतर मंतर एंड ऑफकोर्स पुलिस एक्शन के बाद, तो हुआ कुछ ऐसा कि हमारे बॉलीवुड के बहुत से लोगों ने भी ज्वाइन किया है स्टूडेंट्स को एज दे मार्च टुगेदर, और उनको या तो वर्चुअली या फिर फिजिकली वहां पर जाकर बहुत सपोर्ट किया है. और उसी के बीच में इमरान खान जो है वो ऑफकोर्स ही वॉज वॉकिंग अलोंग विद द स्टूडेंट्स, एंड वी ऑल्सो सॉ अबीश मैथ्यू, रौनक रजनी एंड मीका सिंह, हु ऑल्सो स्पोक आउट अगेंस्ट द पुलिस क्रैकडाउन. सो देखने की बात यह है कि बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं इस टाइम पर, एंड सलमान खान फॉर एग्जांपल, ही केम आउट इन द ओपन एंड ही सेड हार्ट गोज आउट टू द स्टूडेंट्स हु वर हर्ट, एंड ऑफ कोर्स शबाना आजमी जिनको उसी प्रोटेस्ट के दौरान एक अस्थमा का अटैक भी हुआ, एंड शी वाज ऑल ओवर द इंटरनेट इन टर्म्स ऑफ व्हाट शी हैड टू से अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग एट जंतर मंतर वाज एब्सोल्युटली नॉट राइट. तो वेल, हम भी बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि अगर वाकई स्टूडेंट्स के साथ में इस तरह का कुछ हो रहा है एंड एजुकेशनल सिस्टम की बात है, तो बातचीत करके इस बात को डेफिनेट सुलझाना चाहिए. लेकिन इस तरह की खबरें जरूर हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हैं, एंड देयरफॉर वी नीड टू गेट टू द बॉटम ऑफ व्हाट्स रियली हैपनिंग. आफ्टर ऑल, डेडिकेशन, सिंसेरिटी, कीननेस टू स्टडी हार्ड, अपना फ्यूचर बनाना, एजुकेटेड इंडिया बनाना, ये सारी की सारी चीजें जो है स्टूडेंट्स का हक बनता है. लेकिन एट द सेम टाइम, आर दीज रियली स्टूडेंट्स डूइंग, या इसमें कहीं और किसी और का हाथ है? इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट, read about it, be aware before we start supporting any movement, right? Radio Masti 24/7 par thoda sa serious hona band karenge, sunenge gana number 4. जी बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा और मैं भी वापस आऊंगा आपको बताने के लिए टॉप 3 गाने कौन से. जस्ट अ लिटिल बिट, स्टे ट्यून्ड, रेडियो मस्ती 24/7 पर, मैं रेणुका आपके साथ.
1: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
2: Check it out.
1: Trending song, number 4.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: एंड मैनी टाइम्स मैं बिल्कुल आती हूँ और मैं भाग जाती हूँ, घर नंबर एक तक का इंतजार नहीं करती हूँ। मुझे बड़े सारे लोग उसके बाद लिखे भाग गई, आज जल्दी भागने की पड़ी थी। और सबको शक ये होता है कि मुझे फ्राइडे शाम की पार्टी करनी होती है, लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, इट इज थर्सडे एंड आई हैव नो रीजन टू रन बिकॉज मेरी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भागने वाली हूँ अभी इस बात को बताने के बाद में।
3: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20।
2: तो ये हॉट और स्पाइसी और क्या क्या गाने हैं, वेल कौन से रह गए हैं टॉप 3, लेट मी टेल यू। कॉकटेल 2 के साउंड ट्रैक से ये वाला गाना, विच वॉज नंबर 2 लास्ट टाइम। ये है गाने टॉप 3 जो मैं सुना रही हूँ आपको।
4: कैसे बनी गुलौड़ी बिना चटनी,
2: धमाल 4 एंड देयर इज अ थर्ड गाना विच इज राइट हियर, माशूका। जी हाँ, हम आपके माशूका, आप हमारे माशूका। कॉकटेल 2 के साउंडट्रैक से येट अगेन। तो आपको मुझे बताना है इस टाइम पर कौन सा होने वाला है गाना नंबर 1। फिलहाल के लिए आप बताइए, मैं यहीं पर हूँ जब तक सुन नहीं लूंगी, और ऑफ कोर्स गाना नंबर 1 चलने से पहले भाग जाऊंगी, ठीक है। रेडियो मस्ती 24/7 पर रह गया सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम, एंड आई होप यू गाइज, मैंने इतनी ट्रेनिंग दी है इतने हफ्तों में, पता तो लग गया होगा ना कि आज गाना नंबर 1 कौन सा होने वाला है। ओके, डोंट गो बाय माई चॉइस, ओके गो बाय योर चॉइस, बिकॉज दैट्स व्हाट आई नीड टू नो क्या हमारी चॉइस आपसे मिलती है या नहीं। रेडियो मस्ती 24/7, दीज आर द टॉप 3 गाना आई जस्ट प्लेड, आई एम वेटिंग।
0: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 3।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: खुलासा हो रहा है, धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। गाना नंबर 3 चल चुका है और सारे के सारे लिसनर्स अब बिल्कुल कान गड़ाए बैठे हैं मस्ती टॉप चार्ट्स पर कि कौन सा होगा गाना नंबर 1। हेलो, फ्रॉम रॉकिंग द चार्ट्स टू रूलिंग द वीकली काउंटडाउन, जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20। मस्ती टॉप 20 एंड ऑफ कोर्स दिस इज रेणुका विद यू। एंड गाने रह गए हैं 2 और दोनों में से कौन से गाने हैं ये? My Mashuka, the hotness, the heat, oh my god, Kriti Sanon, and of course the other one. What amazing positive gana. देख के मन करता है कि पार्टी करो। जी हाँ, दोनों कॉकटेल 2 के साउंडट्रैक से इस टाइम पर कौन होगा गाना नंबर 1 ये बताएंगे आप। और फिलहाल के लिए मैं निकलूंगी यहाँ से रेडियो मस्ती 24/7 पर। गाइज, एज ऑलवेज आई हैड अमेजिंग फन टॉकिंग टू यू एंड ऑफ कोर्स प्रेजेंटिंग दिस शो टू यू। लेकिन फिलहाल के लिए टाइम फॉर मी टू लीव एंड टेक योर गुड बायस, ओनली टू सी यू। अभी 8 बजे और सुबह 7 बजे पौने 11 घंटे में वापस आके यहीं पर बोल रही होंगी मैं फिर से। लगता है नींद में भी आज बोलूंगी। रेडियो मस्ती 24/7 गुड बाय फ्रॉम मी एंड ऑफ कोर्स मेरे सारे सर लोग जो अभी तक आज ऑफिस में मेरे साथ में बैठे हैं। हाउ स्वीट ऑफ देम, रियली। कह रहे हैं अकेले रह जाओगे, नहीं ये नहीं पता कि शो मुझे अकेले ही करना पसंद आता है, लेकिन नहीं, जान नहीं छोड़ रहे, काम कर रहे हैं, एटलीस्ट ढोंग तो कर ही रहे हैं। चलिए, हैव अ फैंटास्टिक रेस्ट ऑफ द वीक गाइज, रेस्ट ऑफ द डे, इवनिंग गाइज, एंड दिस इज रेणुका सिंह, बाय बाय एंड टेक गुड केयर, लव यू ऑल।
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।
0: Trending song number 2.

0: All music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो। ट्रेंडिंग सॉन्ग, चेक इट आउट। नंबर 1।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल,
2: आज फिर
0: इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
3: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
7: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे।

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉक।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेले है। जोश में रहो।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

I would like to thank Mirchi Awards for giving me this opportunity. हर कंपोजर का एक ड्रीम होता है. मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं अपने देश के साउंड्स को लेके कुछ करूं. और मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे ये मौका मिला कि मैं अपने देश के म्यूज़िक को एक साथ इकट्ठे बाइंड करके एक स्टेज पे लाऊं. एंड इट वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल विदाउट दिस अमेजिंग आर्टिस्ट्स ऑन स्टेज. एंड दिस इज साउंड ऑफ आवर नेशन. होप यू गाइस लाइक इट. एंड दिस इज व्हाट मेक्स मी लव माय जिंदगी. सो ऑन दैट नोट, लेट्स गो.

भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: रात अकेली है
2: तो क्या हम

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh me raho.
3: Raat akeli hai.
0: Raat akeli hai to kya? Hum to.

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live par.
2: Raat akeli hai to kya, hum to

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से

कभी रोशनी, कहीं कहीं शोर रौनकें, कहीं आग आग, कहीं धुआं धुआं, कभी आसपास, कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम, कभी मौन हो तुम।

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर भोला चेहरा हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

उसकी तस्वीर निगाहों में, तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

0: तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है या एक सवाल है, तेरे सामने जो भी आएगा उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा।
1: रात अकेली है
2: तो क्या हम तो आप

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो
2: छोड़ भी दे मजे

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

अपनी पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

अपनी पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज व्यूज एंड अ पिंच मस्ती।
1: बिल्कुल आपका पहला प्यार मंडे मॉर्निंग को बिल्कुल हाजिर हो चुका है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ ब्रांड न्यू मंडे, अ ब्रांड न्यू वीक। एंड चलिए अ लिटिल थॉट टू किक थिंग्स ऑफ एज वेल। भाई यू डोंट हैव टू हैव द एंटायर वीक फिगर्ड आउट टुडे। एक पॉजिटिव थॉट, एक अच्छा डिसीजन और एक स्माइल के साथ अगर मंडे शुरू हो जाए तो बाकी वीक भी अच्छा ही हो ही जाएगा, ऐसा हम दिल से मानना चाहते हैं, राइट? एवरी सनराइज इज लाइफ सेइंग हियर्स अनदर चांस, सो व्हाटएवर हैपेंड लास्ट वीक सेलिब्रेट इट इफ इट वॉज गुड, लर्न फ्रॉम इट इट वॉज नॉट, बट डोंट कैरी अननेसेसरी का बैगेज टू अ ब्रांड न्यू मंडे, राइट? और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आज आवाज रेणुका की थोड़ी सी अलग लग रही है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यहाँ पर ये आवाज इसलिए अलग लग रही है क्योंकि बंदी भी पूरी की पूरी अलग है। सो वाइल हमारी लवली लवली रेणुका टेक्स अ वेल डिजर्व्ड ब्रेक, मैं हूं अंतरा आपके साथ एंड आई विल बी टेकिंग यू थ्रू द मंडे मॉर्निंग। यस, दिस इज द मॉर्निंग शो, तो अपनी कॉफी, चाय या फिर जूस, विच एवर यू लाइक, बिल्कुल के दिन का शुरुआत करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आई होप यू आर रेडी एज वेल। ओवर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स टिल 10 AM वी विल मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटली कॉट अप विद एवरीथिंग दैट मैटर्स। नेशनल हेडलाइंस, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, स्पोर्ट्स updates, technology, business trending stories and those interesting little news bites which will make you go, oh, acha, aisa bhi ho gaya. Because morning are not just about waking up, they are about waking up informed, and especially when we talk about a Monday morning. So well, मॉर्निंग शो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सपना आंटी बिल्कुल ट्यून इन हो चुकी है। गुड मॉर्निंग एंड खबरों के साथ ब्यूटीफुल कारे, ऑफ कोर्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hu.

कविता कृष्णमूर्ति के साथ उदित नारायण की आवाज फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ पुकार, दैट वाज सुनता है मेरा कविता। और मैं भी बिल्कुल यहाँ पर सुनने के लिए ही बिल्कुल बैठी हुई और बताने के लिए भी। 7 बजकर हो चुके हैं 19 मिनट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, दिस इज द मॉर्निंग शो। एंड यस, आज रेणुका नहीं, अंतरा आपको इस मॉर्निंग शो में साथ में लेकर चल रही है। चलिए आज के न्यूज का सिलसिला जो है, लेट्स बिगिन विद द मेजर स्टोरी कमिंग राइट देयर फ्रॉम इंडिया। सो अगर आप फॉलो कर रहे हैं द हेडलाइंस ओवर द लास्ट few days, you know that the issue of exam paper leaks has sparked massive protests across the country. For lakhs of students, it was just not about that one exam. It was about the trust and the accountability they were asking about from the entire system. Now, responding to those concerns, India's Prime Minister Narendra Modi, he has announced a high-powered task force to completely overhaul India's public examination system. And interestingly, this panel will be headed by Infosys' co-founder Nandan Nilekani, the man best known for leading the creation of India's Aadhaar digital identity system. Now the focus, making examinations more transparent, technology driven and secure. Government jo hai unhone ye bhi kaha hai, it plans to bring in stricter laws and tougher penalties against those who involved in question paper ke leaks and exam ke frauds. Ab dekhiye, exam mein sirf marks ka game to nahi hota hai, they decide careers, dreams, admissions and there's so much more we got to know about as well. Aur kai baar पूरी लाइफ का डायरेक्शन इसी से ही डिसाइड होता है, इसीलिए जब सिस्टम पर सवाल उठते हैं तो स्टूडेंट्स का कंसर्न भी जेन्युइन ही होता है। नाउ वेदर दीज रिफॉर्म्स ब्रिंग लॉन्ग टर्म के चेंज इज समथिंग वी विल हैव टू वेट एंड वॉच, बट वन थिंग इज क्लियर, टेक्नोलॉजी इज नाउ एक्सपेक्टेड टू प्ले अ मच मच बिगर रोल इन प्रोटेक्टिंग the integrity of the examinations and hopefully future mein students ka focus sirf padhai par ho, na ki is tension par ki paper leak to nahi ho jayega kahin se. So well, that was that from India, but abhi agli khabar kahan se aayegi wo main dhoond ke lati hu, tab tak ke liye let's take a musical break and yes, good morning Yogesh.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 7:29 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. इस वक्त वो वक्त हो चला है जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक अपडेट का टाइम. व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन AY towards MCE at Clementi Avenue 6 exit. हेवी ट्रैफिक की खबर ऑन BKE towards PIE between PIE Changi and Bukit Panjang Road. और एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन PIE towards Udwas after KJE. अवॉइड करें लेन नंबर 2. सो वेल, इस घंटे का ये था ट्रैफिक अपडेट. कमिंग अप नेक्स्ट इज अ ब्यूटीफुल एंड अ वेरी अंडररेटेड सॉन्ग एज वेल. It's called Pia Aina. Suniye sunkar wapas aaiye and I will be back just right after this. This is the morning show with me today, Antra, on Radio Masti 24/7 Live.

है ना, कुछ कुछ गाने कितने अंडररेटेड होते हैं, राइट? बिकॉज वी डोंट लिसन टू देम मे बी एज मच एज, बट सडनली वन फाइन डे यू लिसन टू इट एंड यू गो लाइक, यार ये पहले भी सुना था, काफी पसंद आया था. यू ऑलवेज हैव दोज सॉन्ग्स. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. जी हाँ, अंतरा आपके यहाँ पर साथ है. दिस इज द मॉर्निंग शो. इट्स यस, इट्स मंडे मॉर्निंग, इट्स नॉट ट्यूजडे मॉर्निंग. आई नो आई कम ट्यूजडे मॉर्निंग वाला शो करने के लिए, लेकिन आज रेणुका ने ले दिए छुट्टी, तो इसलिए आज का मॉर्निंग शो मेरे हवाले. चलिए सिंगापुर की खबर की तरफ जो है बिल्कुल बढ़ते हैं. सिंगापुर की अथॉरिटीज, दे हैव वंस अगेन स्टेप्ड अप एनफोर्समेंट अगेंस्ट वेप्स एट ऑल लैंड, एयर एंड सी के चेक पॉइंट्स, एंड द नंबर्स are quite eye-opening. In just 4 days, from July 20th to 23rd, officers jo hain, unhone detect kiye 56 travelers carrying e-vaporizers and seized 444 vapes and related components. Interestingly, around 23% of those caught were Singapore ke residents, while jo rest they were visitors entering the country. Now, of course, ye ek aur important reminder, we all know vapes are illegal in Singapore. It doesn't matter if they are legal in, you know, the country you are flying from. Once you enter Singapore, the rules here apply, and that is, and we all know, jab Singapore mein rule ki baat hoti hai, we follow it. There is no if, there is no but. Under Singapore ki tougher Tobacco and Vaporizers Control Act, ke penalties have become even stricter. People caught possessing or using vapes can face hefty fines, while those involved in importing or supplying them face much more severe punishments, including jail terms as well. So, well, ye check, double check, koi aa raha hai bahar se, kuch aisa hai, bahut bahut zyada zaruri hai. So, well, ye to tha yahan ka update. Gana jo hai, chalo, thoda sa beat ko हायर लेवल पर लेकर जाते हैं, क्योंकि दिन तो शुरू हो ही चुका है, राइट? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग.